पाया। ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरणम संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जी वासे। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखासे। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। रागु जरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वै उद्यम जा आहर हर जी उपरिया। सैल पत्थर मैं जंतु पाई ता कर रिजक आगै कर धरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक सुम्बाही ठाकुर काहे मन पहु करिया। उड़े उड़िया वैसा कोसा तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खिलावै कवन जुगावै मन मैं सिमरन करिया।

जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवा हं जो सेवा हं तुद जी जा नानक तिन कुरबाना हर त्यावै हर त्यावै है तुद जी से जन जुग महन सुख बासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेवे आ जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत तेरी

रहा। खड़ग के तम शरण तिहारी, आप हाथ दले हो बारी, सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखी अन को छय करता, श्री अस्तौज जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछित फल पावै सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़िल, सुन गोंग जो जाहे सो रसना पावई, सुन मूड़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह सहस पण जाए, अर्ध सहस फुन तीन कही जाए, भाद्रव सुदी अष्टमी रबारा, तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रुप ख्याने, तिरियं चरित्रे मंत्री भूप संवादे, चार सौ पांच चरित्र समापत, मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा, दास जान कर दास पर कीजा कृपा अपार, आप हाथ दर राख मोहे, मन क्रम बचन विचार, चौपाई मैं ना गृसह प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कब हुने त्याऊं, कान सुने पहचान न तिन सौ, लिव लागी मोरी पग इन सौ, माह कर रखवार हमारो, माह लो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवारो, बाह गह की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत परियाए, चुन चुन सत्र हमारे मरियाए, देग तेग जग मैं दो चले, राख आप मोहे और नंदलै, तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहि मैं दास निहारा, जान अपना मुझे नवाजो, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आप ही आप गरीबन बाजा,

करो प्रतपारा, तुम साहि मैं किंकर थारा, दास जान दहा तू बारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम करो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिद नाना, कृष्ण जथा मत त्रित्रो चारो, चुक होए कबल्यो सुधारो, कबियो बाचो दोहरा, जो निज प्रमो सो कहा जग माहे, जो तेह प्रभ को त्याई है, अंत सुर को जाहि दोहरा। हर हर जन दोई एक है, बिम चार कछ नाही, जल ते उपतरंग जाओ, जल ही बिखरा समाज दोहरा। जब आस प्रभ को पयो जन्म तरा, जग आए अब मैं कथा संक्षेपते, सबू कैत सुनाए का बाच दोहरा। ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंच लथ जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए है संत, अंत लहंगे मुक्त फाड़, पावहंगे भगवंत दोहरा। काल पुरखी देह मो कोटक बिसन महेश, कोटिंदर ब्रह्मांकित, राव सस करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाकत नेत, सुर्ग बासरक बरकरा, सगरी पुरी समेत चाव पाई। जो ए कथा सुन अर गावै, दुख पाप तेह निक नयावै, बिसन भगत की फल होई, आद ब्याज छुप सका न कोई। सम्मत 1755 हाड़वदी प्रथम सुख दावन, पै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लह लिहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तर, सद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो, रघुबर कथा प्रसंग। साध साध जानो नहीं, बास बाद बेबाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे, नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जाने ओ, श्री असपान कृपा तुमरी काढ़ो। मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ, दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह, गए हो तुहार द्वार, बाहें गहें की लाज अस,

न साकौ। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक, सुन मेरे साहिबा।

अनाहत जुग जुग एको वेस। एक माई जुगत वे आई चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाई दी बाड़ो, जिव भावै तिवै चलावै, जिव होवै प्रवाड़ो, ओह वेखै उन्हां नदर न आवै, बहुता इहो विडाण। आदेश तसै आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोय लोय भंडारो, जुग पाय सेका वार, कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कारु। आदेश तसै आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बहु लख होहे, लख लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश, त्राह पत पबड़िया चढ़िया होय अकीस। सुन गल्ला आकाश कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखन जोर चुपह न जोर, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीव मरण न जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटा संसार। जिस हद जोर कर विखा सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रोती थिति बार, पावन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल।

Panin no badbadi anangi aname semasti srupe perpangki perbate semasti bepute kelangkang binane kelangki srupe namo radhadi swarang param rupe namo jog joge swarang param siddhe namo radhadi swarang param briddhe namo sastra pani namo astra pani namo param gyata namo lokamata apekhiye paramiye bhogiye bhukte namo jog joge swarang param yukte नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नो प्रेत प्रेत देवी सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पू पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगी नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदां बुद्धदावृतकर्ता आदो उर्द अर्दंग अगं उघर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोस्पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अछिदीय भेदीय नामं कामं समस्त उपराधि समस्त स्थानं तेरा जोर चात्री छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जूह है देश है पेसै उपजं प्रयात छंदे अगाधी अबाधी आनंदी स्वरूपे नवो सर्वान समस्त निदाने नमस्तवंग रनाथे नमस्तवंग प्रपाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्यंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चरपण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल योगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग बाने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्ता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग पाले सर्वंग काले सर्वंग काले सर्वंग पाले

පැලෝ අරණ නාම කාම් බහින පේක්ෂත මුනහ ජායි සර්මාන සර්වතර මාස් දයමාන තාහි එක් මූර්තනෙක් දර්ශන කීන රූපානේක කේල කේල කේල කේලන අන්ත කෝ පෙර එක් දීපේ වන ජානහි ජෙහ බේද ඔරක තේබ රූප රංග න ජාත් පාසෝ ජානින් කහ ජේව තාත්මාත් න ජාත් ජාකර ජන බරණ බහින චක්‍ර බකර ෆිරයි චතර චක් මානහි පුරතින් ලෝක චෞදහ කී බිකය ජග ජාපී ජහ ජාප ආද දීව අනාද මූර්ත ථාපය සබහ ජි ථාප පරම රූප පනීත මූර්ත පූන් පුරුඛ පාරු සර්බ සබ්‍රත්‍ය සියම් පහු ගරණ පංජන හාර කාලහීන කලා සංජුත කාල පුරුකා දේශ ධර්ම තම් සො පරම රත්න පුතලක් පේස අංග රග්න රංග ජාක ජාත් පාතන නාම ගර්භ ගංජන් දුෂ්ට පංජන මොකද දායකා ආප රූපමීක අනුසති පුරුකබ්දූත ගර්භගංජන සර්පංජන යාදු රූපසූත අංගහින අපංගනාත එක් පුරුඛ පාදු සර්වලායක සර්වකා සර්වකෝ ප්‍රත්පාර සර්වගන්තා සර්වහන්තා සර්වතියන් පේඛ සර්වශාස්ත්‍රනා ජානහින් ජේ රූප රං අරණේඛ පරම වේද පුරාණ ජාකහ නේත පාක් නෙතෝ කෝට සෙමරත ප්‍රාණ ශාස්ත්‍රණ ආවේ මොහ්චෙතෝ මද් පාර ඡන්ද ත ප්‍රසාද ගුණ ගන උදාර මහම පාරස්න පංග උපමා නංගන ප ප්‍රකාශ නිස දින අනාස ආදන බාහු සාහුන සාහු රාජන රාජු පාණන පාණ දේවන් දේ උපමා මහන් ඉන්ද්‍රන් ඉන්ද්‍ර බාලන් බාල රංකර රංක කාලන් කාල අනුපුත අංග අබ පංග ගාතමෙත පාර ගුණ ගන උදාර මොන ගන ප්‍රණාම නිර්පණ කාම ආතුදුත ප්‍රචණ්ඩ මෙතගත් අඛණ්ඩ අලස කර්ම අදෘශ්‍යා ත්‍රම සර්වපරණඩය අණ්ඩන් බඩැන් චාචරි ඡන්ද ත ප්‍රසාද ගෝබින්දේ මකන්දේ උදාරේ අපාරේ හරිහම් කරින් රණ්ඩාමේ අකාමේ පුජං ප්‍රයත් ඡන්ද චතර චක්‍ර කර්තා චතර චක්‍ර හර්තා චතර චක්‍ර දන්නේ චතර චක්‍ර ජානේ චතර චක්‍ර වර්ති චතර චක්‍ර පර්තී චතර චක්‍ර පාලේ චතර චක්‍ර කාලේ චතර චක්‍ර පාසේ චතර චක්‍ර වාසේ චතර චක්‍ර මන්නේ චතර චක්‍ර දන්නේ චාත්‍රී ඡන්ද න සත්‍රන මිත්‍රන පරමං න පිත්‍රන කර්මං න කායි අජනමං අජයි න චිත්‍ර න මිත්‍රං පරය පවිත්‍ර ප්‍රතිස අදිස අදෘස අකෘසය භගවති ඡන්ද ප ප්‍රසාද කස්තේ කි අච්ඡ දිස කි අපිජ පිස කි අගන් කර්ම කි අපජ පරමෛ කි අපජ ලෝක කි අදත සුක කි අබදුත වරණ කි විභූත කරණ ක රාජං ප්‍රභං කි ත්‍රමං තු ජයං කි සුක වරණ ක සර්බ පරණ के जगतं कृतियं के छत्रं छत्रियं के ब्रह्मं स्वरूपं के अनुपहनुपं के आद अधिवें के आपोपेवें के चतुरंग विहीनं के एक अधीन के रोजी रजा करहिं मारहा के पाक व्याभें के गैबुल व्याभें के अफल गुनाह के साहन साहें के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करहिं मह के कर्मं करीमें के सर्वं कलिहें के सर्वं दलिहें ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗਾਉਣਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭਾਉਣਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਸਾਜਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੀਨਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਲੀਨਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਜਾਹੋ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਹੋ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਸੁਖੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੁਖੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਸਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਸਦਾਭੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਅਪੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀ ਖਤਮਦਾਮੈ ਗਨੀ ਮਰਸ ਕਸਤਾ ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾ ਬਿਲਾਂਦਨ ਮਕਾਨਾ ਜਿਮਿਰ ਜਮਾਨਾ ਤਮ ਜੋ ਤਮਾ ਮੈ ਰੁਜਲ ਨਦਾਨ ਹਰਿ ਫਲ ਦੀ ਮੈ ਜਾਗ ਜਕੀਨ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦ ਭੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਨਵਾਜ ਗਰੀ ਮੁਖ ਰਾਜ ਹੈ
निरुक्त स्वरूपै त्रिमुक्त भूतै प्रभुक्त प्रभा हिंस जुगत सुदा हंसदैव स्वरूपै भेदी अनूपै समस्त उपराजय सुदा सर्वसाजय समस्त सलाम सदैव काम है निर्बाध स्वरूपै गाद हनुपै ओंग आदि रूपै नास रूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिबादी अगंजे अगादे शुभम सुरभागे सो सर्व अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकु प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा हंस दैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है लेख है भरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है वह है भूत्या तूत्या अनास है उदास है धंध है बंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अचिंत है सुनिंत है अलिख्य अदिख्य अलिख्य अपेख है अटा है अगह है सब है अगम है नील है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है यही चरपट छंद प्रसाद सर्वघंता सर्वघंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वंकर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंतलमं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता शाबलछंद त्वप्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साकं श्रीका मित्त अमीक सदैव प्रभ अजय अजा है भगवती छंद त प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मैं सुरत लाम समस्त कलाम है के साहब दिमागे के सुरत जागे के काबल करी मैं के राज कर रही मैं के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करी मुल्क माले के उसने जमाले गनी मुल्क राज है गरीबल नवाज है हरिफल सकन है हरा सिल कन है कलंकंक प्रणास है समस्त निवास है अगंजल गनीम जय करही मैं समस्त जुबाहे के साहिब किराहे के नरकुं प्रणास है बहत निवास है के सर्वल गवन है हमेश्वर रवन है तमामल तजी मैं समस्त अजीज है परम परमी से समस्त अदीस है अदेशल अलेख है मेसल भेख है जमिल जबा है अमिकुल माहे करिमुल कुमाल के जुरत जमाल के अचलंग प्रकाश है कि मित्त सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मित्त विभूत है कि मित्त उपसाह है कि आत्म प्रभ है कि अचलंग अनंग है कि मित्त उपंग है मद भार छंद त प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गुण मदाम अरबर अगंज हरणन प्रपंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपहनास मौन मान प्रकाश गुण गन प्रणाम जलथन मदाम अन छिजे अंग आसन भंग उपमा पारु गात्मित दारु जलथल अमंड दिस्विस भंड जलथल महंत दिस्विस ब्यंत अनुपहनास त्र तर त्रास आजन बाह एक दाह ओंकार आदि कथनी अनाद खल खल ख्यान खल खन ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज अंग आसन पान छिज गात अजना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीट धर्म अथ ढीट कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त प्रसाद करणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्व अबारण है त्रित के धन है जग के कर्ण है मन मान है जग जन है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपास है सर्वनाश है करणाकर है बेसोंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है भारत पर है करणाकर है अजपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करणाकृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमतेश्वर।

मर्याद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदन प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयम भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

छाड़ कै गहो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज असु गोबिंद दास तुहारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जग जग फेर वटाई अज्ञान बुझै ताहि साजगुरा संतोख का धर्म ग्रथवाओ त्रे तेरा जत का जोर ग्रथवाहो द्वापरत पै का सत ग्रथवाहो।

साहब जी ने कहा जिन्ना चिर ज्ञान दा हनेरा दुखी ने सब, अंधकार सुख कबह न सोई है। जिन्ना चिर ज्ञान दा हनेरा अंदर वरतदा है ओना चिर किसे दी भी बिरती सदीव काल सुख विच नहीं सुती है, नहीं बिराजदी है। एक रस आनंद है जी, एक रस सुख है। राजा रंक दो मिल रोई है, भावे रंक कंगाल है भावे राजा है, दुनिया का चक्रवर्ती पातशाह हो गए, दोवें मिलके झूरदे ने, चिंता विच ने, चिंता व्यापदी रहिंदी है, हर खुशोग खुशी गमी बनी रहिंदी है, देवत्यां विच भी है। एकरा सुख है सदानंद, सदानंद न हो भी सोग, कबू न व्यापा होमै रोग, कदे भी होमै हंगता ममता, मेर तेर अपना पराया, हर खुशोग खुशी गमी ताइया ने जे अपनाता है, जे मेर तेर कबू न व्यापा होमै रोग, कदे भी होमै दा रोग नहीं नास, ब्रह्म ज्ञान हुंदा ही तां है। जिन्हों महाराज खोजो हो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बेसमन बेसम भय बेसमादा, परमगत पावै हर सिमर प्राणी, रहाओ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है। थोड़ी जिन्नी भी हंगता नहीं, सूक्ष्म संकार भी निरह जाता है, कदे भी होमै दा रोग नहीं। जिन्ना चिर होमै दे रोग नूं ज्ञान पट दिंदा है, ला दिंदा है, होमै करी तां तू नाही। जिन्ना चिर होमै असी वरत्या, होमै नूं धारण कीता है, तू प्राप्त नहीं होया, तू होवै है हो ना है। तू जदों प्रगट हो जाना उदों हंकार नहीं रहिंदा है, विरोधी तत् है, होमै नावै नाल विरोध है, दोए न वसै कठाए, चानण ते हनेरा कदे कठे नहीं रह सकते, एक मंदिर विच एक कमरे विच जां हनेरा जां प्रकाश होवेगा। होमै अंध गुबार है, हनेरा है, ज्ञान ब्रह्म दा ज्ञान, वाहिगुरु दी प्राप्ति, प्रकाश ही प्रकाश है, लोई लो है, फिर ही सारे जोत दिसदी है, सब मह जोत, जोत है सोए, तिसदा चानण सब मह चानण होए, नहीं रहिंदी द्वैष उत जाके, ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई, ना साडा कोई दुश्मन है, ना असी किसे दे वैरी है। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सारे ब्रह्म नहीं पसारा पसारिया होया, सारे जीवां दे अंदर एक ब्रह्म दी ही जोत है। सतगुरां तो ये ज्ञात प्राप्त हो गई, सोजी मिल गई है, तुझ बिन दूजा ना ही कोई, तेरे तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है, तू करतार करह सो होए, तू करतार आप ही जो करदा वही हुंदा है, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। महाराज जी बख्शिश, सूक्ष्म अहंकार भी निरह जाता है, ना व्यापा होमै रोग, कदे भी होमै दा रोग नहीं है, हमेशा ही निभदा है, अरदासा ही निकलदियां ने, सेवा सिमरन ही हुंदा है, हाथ ही जुड़दे ने। खोजो हो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, ऐ संतो शांत आत्मा, हरि दे प्यारे हो ब्रह्म ज्ञानी।

सकल पवन कुशल करण सर्व भूते आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मछ कछ हो ब्रह जमुना कैकूल,

ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत तिनको मोह पहया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हु को तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर पर गासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कटकट बासा आपे नर आपे फुण नारी आपे सारा आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।

करण कौ संतत ही सत संगत संग सुरंग तेजस गावत है। त्रम पंथ धरयो धरणी तर आप रहे लिव धारण तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन चित ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा परपूर्ण शब्द त्रंग प्रगटित दिन आगर गहर गंभीर था अत बड सुबहर सदा सब बितरत नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जन त्रास मिट्यो।

सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर। गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजोनी संभव पुरखोत्म अपार परे। कारण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तय हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंदियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तय हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुधामा पुप भक्त हर के जोगन, अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पन। तिनकौ अवतार पयो कलपिंतर जस जगत्र पर छायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो, जो तिन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिन। कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटैखिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत हृदय सिद्ध नाम निद पावै। सोई रामदास गुर बल भन मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड्यो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट्यो जियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लगता लागै, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिब अंगद अंग संग नानक गुर, तिब गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर से पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास। ताते संगत सघन पाए पौ माने, तुम मलियाग्र प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास। जे पिख तत होए रहस मन सोई, संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीब रखाई। गुरे अमरदास की अकथ कथा है, एक जीही कछ कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बडाई। हम अब गुण पहरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उद्धारण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार दास बने अवरना कोई मान बच जिन जान्यो भयो तह सम सरसोई तरन गगन नव खंड मह जोत सब रूपी रहो पर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरे अर्जुन प्रतख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित प्राण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुरे अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुरमोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बिठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जम पह असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरहो के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो एको अंकार

आप पछाने हर मिले बहुड़ ना मरना होए कीचड़ हाथ ना बूढ़ी एक नदर निहाल नान गुरमुख बरे गुरसरबर सच्ची पाल अगन मरे जल लोड़ लहो वेन गोर निद जल नाहे जन्म मरे प्रमाइए जे लख कर्म कमाहे जाम जा गात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पाद गुर हर मिले मिलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मेला अवगुणी चिंज भरी गंधी आए।

संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे कै फल क्या गनी जा हर भगत न पाओ पैदा खादा बाद है जामन दूजा पाओ वेखन सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हर होमै आबो जाओ हैन बिरले नाही घने फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान।

कर कर्म धर्म सुच संजम करहै अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कमावै सो थाए ना पवै दरगह होए खुआर। सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए। रागनाद सब सच है कीमत कही ना जाए। राग नाद बाहरा इन्नी हुक्म ना बूझे आ जाए। नानक हुक्मै बूझ है तिना रास हुए सतगुर ते सोझ ही पाए। सब किछ तिसते होया ज्यों तिसै धीर जाए। सत

गुर सरनाई उबरे नानक लय छडाई। सत गुर पुरख हर ध्याइंदा सत संगत सत गुर पाए। सत संगत सत

हर जैसा पुरख ना लबाई, सब देखिया जगत में टोले, गुर सतगुर नाम दड़ाया, मन अंत न काहू डोले। जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। सलोक महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। रते से जे मुख ना मुड़न, जिनी संझाता साई।

बाल हो बंधन छुटे सब किछ होते उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत संग सखा सब

वारा प्रबल चंड कौशिक उभारा खौखट औ पौरानंद गाए अष्टमाल कौशिक संग लाए।

वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बन ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारे पुन आई दीपक की बारी कछे।

गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है किते किते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते किते होर करे ताख न सकह केई के जे वड भाव ते वड होए नानक जान साचा सोए जे को आख बोल विगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वामन हारे केते राग परी स्यो कही अन केते गावन हारे गाव है तोहन पौन पानी बह संतर गावे राजा धर्म द्वारे गाव है चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इदा सुन बैठे देवत्यां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सरा जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पाए आले गावन रतन पाए तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पहमना रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भाव सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेपूता खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथे सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आद नील नाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध वरासाद।

ईलानाद अनाहता जुग जुगे को वेश एका माई जुगत व्याई तें चेले प्रवाण एक संसारी एक पंडारी एक लाए दी बाण जेव तेस पावा।

आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्री हरि कृष्ण त्याए, जिस डिठै सब दुख जाए, सब थाई होए सहाय। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठे सोही है

नानू कच बाहर साहुले। अगे अनिमन रोस करे अपनी परती ते आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै, जिसकी बस्त तसे आगे रख है, प्रभ की आगे मन मथ है, उसते चौगन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हे तो, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लाबै, ओ बिनसै ओह मन पछतावै, जो दिसै सो चालनहार, लपट रहो तहि अंधार।

में बिनादियों के की जाए। गो वैद भजन बिन बिरथि सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे कड़ब सिउ हरनाउ, नानक ताकै बलबल जाउ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गण लावत। जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेसै आप न कराए, आवत जावत जन्मै मराए। जिसका अंतर बसै निरंकार, तिसका सीख तरै तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक ओन जन चरण प्राता।

ब्रह्म नानक प्रभु का सतगुरु बाणो सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आपने बार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतरराज मानव सो नरपति होव स्वानव जो जानय मैं जो बनवंत सो होवत बिस्ता का जंत आपस पाओ कर्म प्रभावै का पुरुखन दा ज्ञान कर कृपा जिस कै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आग्या सुख पावै करमंता होए कर गिरबावै तृण समान कछ संग न जावै बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पर भीतर ताका होए विनाश साबते आप जाने बलवंतो खिनमय होए जाए पसमंतो किसै न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा कम टै मांडो सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हो धारे श्रम पावै सगले विस्तारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर परे अवतार अनक यत्न कर आत्म नहीं द्रवै हर दुर्गा को कैसी गवै आपस को जो फलक हावै इससे भलाई निकनियावै सर्व की रेन जाका मन होए कहु नानक ता की निर्मल सोए जब लग जान मुझ ते कछ होए तब इसको सुखना ही कोई जब एह जानै मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारै को बैरी मीतो तब लग निहचल नाही चीतो जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दी सुजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटाए गुर प्रसाद नानक हो छूटाए सहस खटे लख को उठतावै तृप्त न्यावै माया पाछे पावै अनक भोग बिखिया के करै तृप्ता मैं खप खप मराए बिना संतोख नहीं पूरा जाए सोपन मनोरथ वृथे सब का जाए नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करण हार इसका हाथ कहा बिचारो जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो स्वप्न रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझा देखा करै बबेक आप ही कापै अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सादी रह समाए आप उपदेसा समझाए आप आपे रुचिया सब कै साथ आप कीनू अपन विस्तार सब का छुचका हो करणै हार उसते भिन्न कहा हो किछ होए थान तनंतर एकै सोए अपने चलत आप करना हार कौतक करे रंग पार मन मह अमर अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत स्वामी गुर प्रसाद किन्ने वख्यानी सच सच सच सब कीनाओ कोट मधे किन बिरला चीनाओ भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक सोजन उपरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अस्परी संत दूसरे आर जा सकाए संत दूसरे जमते नहीं सकाए संत दूसरे सुख सब जाए संत दूसरे नरक नह पाए संत दूसरे संत दूसरे